0: यश मैं हनगांव विलाबल में कई विनाडी पाना सिखाए
1: दशक घातक जनता विश्वास से सह प्रसाद दिनागत कृमि राज आयुर्वेद औषध आईएसओ एसएलएस 9001:2008 सहातिक सह जीएमपी प्रमितीय सहातिक कल कृमि राज निष्पादन कुरलेसोय वेलबीपनीय हंदीतैले मुखशोधनीय कृमि राज करल गुली अतुल औषध वर्ग 300 करत वडा देन कागिल स्लाफ अतुल दिवेन पुरा सेलुम देशीय औषध वेलंदसल सह ओबट लंगम वेलंदसलेन
2: NLP හදහන ලංකාවේ වැඩිම තෑගි දෙන තෑගි අවස්ථා වැඩිම ලොතරැය්‍ය NLP හදහන ඔබත් අදම NLP හදහන බලා ගන්න.
3: දහවලේ ඇහෙන ලංකාවම අහ

हमें सूत्र देशनाव है महाकारुणिक बुदुरजानन वहन्से विसिन लोक सत्वयावित अनुकंपावेन देशना करन लद आरक्षक परित्राण देशना अतरिन महा समय सूत्र देशनाव अति विशेष वोगी तारका समूहयक पिरिवरा बेबलिन पूर्ण चंद्रयासे इदा कपिल वस्तु नगरा सन्ने महा वनपित एकालोक करमिन समस्त महा विश्व तलेम बुद्ध ना चत्रेट हसु करमिन पवत्मन लद मे देशना विशेषेन्म सज्जायना किरिन्ने सम्यक दृष्टिक देवीदेवताओं वहांसेला की एल्म बेल्महा आशीर्वादे अपेक्षा विने इदा बुदुरजानन वहांसेगे श्रीपाद मूले ही गौरवा विवादन पूर्वकव दस दहसक चक्रावाट्यन सित सपमिनी महानुभाव संपन्न दिव्य गणया बुदुरतुन सरण गिय यम पिंवते वेनम ए आय किसीदा अपायगामी वन्नी नटे कियमिन बुद्ध प्रमुख श्रावक संघ रत्नयत स्वकीय अत्यंत गौरवय पुदकलह मे वनाहि विश्वगत दिव्य शक्तिन एकराशी करमिन जीवितेत एलमिन सकलांतराय दुरुकुट सित शांतिय सलसीमेला महोपकारी वन परित्राण धर्मयके सियलु देवियन्के आशीर्वादय पिनिस ए महानुभाव संपन्न महा समय सूत्रय सदहे सितिन सज्जायने करुण लबन्ने पूज्य गणी कुमरे शांत स्वामी वहन